जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा सगल पुरख में पुरख प्रधान उसको जो जाने नीचा जाका मन होए सगल की रीना माने अपने ते बुरा मिटाना सुख दुख जन सम दृष्टि।

जय प्रसाद गृह संग सुख बसना प्रसाद रंग रस भोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे है जय प्रसाद सुख सेज सोई जय जय प्रसाद तुझ सब को माने जय प्रसाद तेरु रहता धर्म प्रभु जी।

जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, जय प्रसाद तुझको ना पहुँचै, जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, जय प्रसाद या भूखन पहलीजै, जय प्रसाद असव

ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अध्याखिर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता।

0: जैसा हर्क तैसा सोग,
1: सदानंद नहीं वियोग,
0: तैसा सुरन तैसी सुमाटी,
1: तैसा अमृत तैसी बिखटी,
0: तैसा मान तैसा विमान,
1: तैसा रंग तैसा राजान,
0: जो वरता ऐसा ही जुगत,
1: नानक को पुर कहिए जी,
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
1: जिस जिस कर रखे तैसा को नाओ।

0: कई कोट किरपन कठोर कई कोट पर दर्व को ही रहे कई कोट माया श्रम माहे जित तित लाभो तित तित लगना
1: करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पाथर बृटन बजाए
0: कई कोट पवन पानी बै संतर
1: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट ससियर सूर निखेत्र सगल समग्री अपने सूत धारे कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट किए रतन समुंद कई कोट किए चिर जीवे कई कोट जाख्य किन्नर पिसाच सबते निर सब हूं ते दूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट जन्मे जीवे मर है
1: कई कोट भोजनी फिरे
0: कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट किए तनवंत जय जय भण तय तय राखे कई कोट पे बैरागी
1: राम नाम संग तिन लिव लागी
0: कई कोट प्रभ को खो जनते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास कई कोट मांगे सत्संग जिनको होए आप सुप्रसन्न कई कोट

कबहु ऊंच नीच में बसे, कबहु निंद चिंद व्यवहार, कबहु बेता ब्रह्म विचार,

0: ठाकुर को सेवक जाने संग
1: प्रभु का सेवक नाम के रंग
0: सेवक को प्रपालन हारा
1: सेवक की रखे निरंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभु तारे
1: नानक सो सेवक।

0: राष्ट्रपति
1: शांत जना मिल करो विचार अवरो उपाव समीत विसारो कारण कारण सो प्रभु समर्थ।

0: पति
1: जब आकार कशन जिष्टेता
0: पाप पुंता कहते होता
1: जब धारी अपन सुन समाद
0: तब बैर विरोध के संत मात
1: जब इसका भरण चिन्ह जापत जब अपन आप पार ब्रह्म
2: तब कहां के सो किस तब परम
1: आपन खेल आवर्ती जा
0: नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभु केवल धनी
0: तब भगत को किसको न गनी
1: जब एक हर अगम पार
0: तब नरक स्वर्ग को उपन तार
1: जब निर्गुण प्रभु से सुभाई
0: तब जगत को कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी जो तरे
0: तब कवन निडर कवन तब डरे
1: आपन चलत आप करने हार
0: नानक ठाकुर अगम पार
1: अविनाशी सुख अपना सुन जब पूर्ण करता प्रभु सोई
0: तब जम की तृष्णा को किसे होए
1: जब विगत गोचर प्रभु का
0: तब चित्र गोबर

जय निर्मल पुरख पुरख पद होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे कर्ण करावन करने हार जब अपनी शोभा अपन सगम नाई जय सर्व कला आपे परवीन जब अपन आप उतारे जय अपन चापन आप नेरा विस्मन विस्म रहे विस्मात जय अचल अशेद भेद सुमाया आपस को आपे आदेश जय कह के भगवंता जय अपना आप दियारा बहु बेअंत ऊचते ऊंचा जय आप प्रचो पर पंच कार पापुन तय पही कहावत आल जाल माया जंजाल दुख सुख मान अपमान आपन के लाभ कर देखे जय अवगत भगत है आप आपे तनी आपे कौत करे अनद चोज।

0: बूझ पर पद पाई,
1: स्त्री ऊपर नहीं विचार,
0: जाके मन बसया निरंकार,
1: बंधन तोर भय निर्वैर,
0: आंदेन पूजे गुर के पैर,
1: लोक सुखी है पर लोक सुहेले,
0: नानक हर प्रभु

0: संत जना सुने शुभ वचन
1: सारे व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तस की यह रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो हुए सोई सुख माने
1: करन करावन हार प्रभु जाने
0: अंतर बसे बाहर भी ओही
1: नानक दर्शन देख सब ओही
0: आप सत किया सब सत
1: तिस प्रभु ते सगली उत्पत
0: तिस पावे ता करे विस्तार
1: तिस पावे ता एकोंकार
0: अनुकला लखी न जाए
1: जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन निकट कवन कहिए दूर
1: आपे आप भरपूर
0: अंतर्गत आप जनाए
1: नानक तिस जने आप बुझाए।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजिन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो घट घट के अंत

एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा जब आ करख करत हो कम हो तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत

दुष्ट जिते उठवति उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तु जितव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरैं तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताव तनक मैं हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किल्बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई, अडिल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाई चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार, चौपई को कहै चौपई, संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै, भाद्रव सुधि अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा।

मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करै चात्रिकी न्याय त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोल कुमाई हों कोली जियो कोल कुमाई

0: दुख जाए।
1: नानक बोले सहज सुभाए,
0: चार पदार्थ जे को मांगे
1: साजन की सेवा लागे।
0: अपना दुख मिटावे
1: हर हर नाम हृदय सदगावे।
0: को अपनी शोभा लोरे
1: सास सांगे हमें छोरे।
0: को जन्म मरण ते डरे
1: साजन की सरनी परे।
0: जन को प्रभु दर्श प्यास
1: नानक ताके बल बल जस।
0: दुख में पुरख प्रधान
1: सास संग जाका मिटे अपमान।
0: उसको जो जाने नीचा
1: सो बनिए सब ते उच्चा।
0: सगल की रेना
1: हर हर नाम तिल कट कट चीना।
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: देखे सगल श्रेष्ठ साजना।
0: सुख दुख जम सम दिश्चेता
1: नानक पाप पुन नहीं लेपा।
0: दिन को तन तेरो नाओ
1: मिथावे कोनो तेरा था।
0: माने को प्रभु तेरो मान
1: सगल कटा को देवो दान।
0: रावण हार स्वामी
1: सगल कटा के अंतर जमी।
0: अपने गत में जानो आपे
1: अपन संग आप रब्रते।
0: उस्त तुम ते होए
1: नानक वर्ण जान सकोए।
0: धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: आपको नाम जप निर्मल कर्म।
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: सास संग दुर्मत मल हिरिया।
0: सगल उदम में उद्दम पला
1: हर का नाम जपो जी सदा।
0: सगल बानी में अमृत बानी
1: हर को

0: ज्ञान तुमरे कृपा करे
1: संग सोहै सुनावे चीत
0: तुमराय ता सुप्रीत
1: रखे गृह पीतर बसे
0: अंध खेल माया रंग रसे
1: कर माने मने प्रतीत
0: काल आवे मुड़े चीत
1: पैर विरोध काम क्रोध मोह
0: झूठ विकार महालोक त्रोह
1: एहू जुगत बहाने कई जन्म
0: नानक राख लियो।

0: प्रभ मीठा जिस जन अपना हुक्म बनाया अगंत सहो अपनी देरास अपने अमान कछ बहो सहले
1: अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रतीत आप ही खोवे
1: और उसका विश्वास न होवे
0: जिसकी बस तिस

जय प्रसाद ते सगल छिद्र ढाके जय प्रसाद तुझको न पहुँचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे जय प्रसाद अपूखन पहरी जय जय प्रसाद अस्वस्थ स्वारी जय प्रसाद बाग बिलखतना जिन तेरी मन बंत बनाई।

0: प्रसाद तेरा सुंदर रूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात जय प्रसाद तेरी पत्र है जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहज बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चले
1: जय प्रसाद संपूर्ण फले
0: जय प्रसाद परम गत पावे
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागू
1: गुरु प्रसाद नानी मन जागो
0: जय प्रसाद प्रकट संसार
1: सबका मूल अमर विसार
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप।

0: साधके संग मुख उजल होत,
1: सत्संग मल सगली खोत,
0: साधके संग मिटे अभिमान,
1: साधके संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: साधके संग बुझे प्रभ नेरा,
1: सत्संग सब होत निबेरा,
0: साधके संग पाए नाम रतन,
1: साधके संग केवल
0: साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी,
1: नान साध की शोभा।

0: साध के संग सदा सुख पावे, साधु के संग अजर सहे, साधु के संग महल पहुँचे, बार ब्रह्म
1: साधके संग पाए नाम निदान,
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साधके संग सबको लोधार,
0: साध संग साजन बीत कुटुंब निस्तार।

0: अमृत गुण गाय न
1: साध के संग सर्वथान गम
0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन पेटत होत निहाल
1: साध के
0: संग नरक पर हरे
1: साध
0: संग बिचत हर मेला
1: जो इच्छे सो ही फल पावे
0: साध से गंग न बिरथा जावे
1: ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक कुदरह साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाम
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मन ते विसरे
0: साध संग सर पर निस्तर
1: साध के संग लगे ब्रह्म मीठा
0: साधु के संग कट कट जीटा
1: साध संग पे आज्ञाकारी
0: साध संगत पे हमारी।

0: सगल उदार।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार।
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक कै रंग।
1: ज्ञानी के
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत।
1: ब्रह्म ज्ञानी आम बूटे आगत।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद।
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद।
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज।

0: मिथ्यानाही रसना पास
1: मन में प्रीत निरंजन दर्श
0: क्षत्रिय रूप न पेखे नेत्र
1: सात की जंत सहित
0: सनु कहू की निंदा
1: सत्य जाने आप उसको मंदा
0: सद विख्या पर हरे
1: मन की बात न मन ते टरे
0: जत पंच दुख ते रहते
1: नान कूट में देखो ऐसा पर से
0: सोजस ऊपर सो प्रसन्न
1: विषन की माया ते हुए पिन
0: कर्म करत होए ने कर्म
1: इस वैष्णु का निर्मल धर्म
0: फल की इच्छा नहीं बाचे
1: केवल भगत की तन संग राचे
0: मातन अंत सिमरन गोपाल
1: ऊपर होवत कृपाल
0: नाम
1: को वैष्णु परम गत पावे
0: भगवंत भगत का रंग
1: सगल ते आ गए दुष्ट का संग
0: सगला परमा
1: कर पूजा सगल पार ब्रह्म
0: सा संग पापा मल खोवे
1: इस भगवती की।

0: राम नाम आचम सुधे
1: राम नाम सारस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: कथा हृदय बसावे
0: वो पंडित फिर जो न आवे
1: प्राण श्रीमती पूजे मोल
0: सुख में जाने स्थूल
1: जो वर्ना क्यों दे उपदेश
0: नानक उस

0: नानक तिस मिले जिलुख्यात करम
1: जिसके मन पाप ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: राम तिस नदरी आया
0: दास जिसन तन पाए तन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: दास दर गए परवान
1: अपने दास को आप कृपा करें
0: इस दास को सब सो जी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन

कोट विघातम निकोर कहीं कोट पर दुख न करे कहीं कोट पर देश प्रमाहे नानक करते की जाने करता रचना कहीं कोट राजे रस भोगी कहीं कोट पाथर बिरग निप जाए कहीं कोट देश भूमंडल कहीं कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र नानक जिस जिस पावे।

कहीं कोट मेरी है स्वरंती है, कहीं कोट भूत प्रेत सुगर मरदाचे, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कहीं कोट नरक स्वर्ग निवासी, कहीं कोट फिर कहीं कोट का ले थक पाए, कहीं कोट माया में चिंते, नानक सा

0: मानता हुए कर गिरबावे बोलस कर्मानु को ऊपर करे आस
1: पिता ताका होए विनाश
0: सब ते आप जाने बलवंत

राम नाम चिंतन कर पाया, राम नाम हृदय में तोल, और त्याग भिख्या जंजाल, मुख उजल।

सत्संग कीर्तन गाये हर गुण गाये अमृत रस चाखे सर्व सुख नानक तै पाया कुके को देवता दार पूर्व लिखे काले।

मानु के तु प्रीत्याग धर्म निरंतर को सोए गैर गंभीर गैर सो जाना कृपा निदान दयाल बख्शंद नानके मन अनराहो जो कर पाया सोई हो गए तिसका मंत्र न जाने होर सब थोक सुनिए करता कै तप में तुपिस गहत में पोगी नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया सगल देव हारे अवगाही सगल परोई अपने सूत जन दास नाम ते आवे से जन्म मरे फिर आवे जाए जैसा जन आवे तैसा नानक जान नाना पे करे एक रंग प्रभु अपना सी एक अंकार पूर हो पूरन सब ठाए अपनी कीमत आपे पाई जब जब जीवे नान करना हूं नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे सगल आकार नाम के संग उतरे सुन श्रवण नानक चौथे पद में सो जन गत पाए पुरख सत केवल प्रधान सत पुरख सब माए समाणी मूल सत सत उत्पत जिसे बुझाए ते सब पली विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत्य जन जा के हृदय प्रवेश नाम जपता की गत होए आपे जाने अपनी मित गत अवर न बूझ कर विचार नानक ज्योतिष भावे सोवर्तिया जिन बूझिया

0: सेवक जने संग
1: नाम के रंग
0: सेवक और प्रभ पालन हारा
1: की रखे निरंकार
0: सो सेवक जिस दया प्रभ तारे
1: नानक से सेवक
0: अपने जन का पर्दा टाके
1: अपने सेवक की सर पर रखे
0: अपने दास को दे बढ़ियाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आप पत राखे।

अनक भगत पंदन नित करे भगत बोले हरी सदगुरु अपने हरस पावे जन कुए उस पुरख का नाही कदे विनाश

0: निर्मल होए तुम्हारो चीत, जन्म जन्म के गिल बिग जाए,
1: सुनत
0: आओ सह सुवाय नान गुन गाओ, हिल जाए हो मैं भी पहल, सास गिराधर नाम संभाल, सुख दरगाह जयकार, कौन नानक जाके मस्तक लेख, एक समर एको मनाह, मन तन जाप एक भगवंत, पूर्ण पूर्ण हो प्रभ्याप एक।

0: अंतर्प्रकाश अंधेरे मार
1: नानक
0: नाम रखे सुखोए
1: सतगुर
0: तेंदे मल मसले सेवक कीनो सदा निहाल जन मरण तू प्रम गया रहा सत्संग हजूरी नानक भक्ति नाम समाए तू क्यों विसरे जे किया जाने तू क्यों विसरे जे जीवन जिया गुरु प्रसाद को बिना लाखे जन्म जन्म का टूटा गढ़ अपना नानक जन त्याया आन त्याग जपो हर नाम आप जपो अपने नाम जपाओ बिन भक्ति तन हो सी चार

सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल जैसी आज्ञा तैसा कर्म चार कुंड दे समाए गुरु प्रसाद नानक सुपाओ सस्य सूर नक्षत्र में एक

0: संजना कीर्ति सब धर्म सर्वव्यापी राम संरचन सत वचन साधु सब कहत करन कराउन हा प्रभु जन नानक दर्शन देख समोई
1: आप सत किया सब।

0: जाने ते सदा सुख होए
1: प्रभु सोए
0: ओ तदवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुख जृदय भगवंत
0: तन

न कोस न छोटा करत विकार दउ कर झारो मित्र न पुत्र कृत साजन सख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ सर।

0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए।
1: पंच
0: सोह हे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत धरती होर पर होर तिस्ते भारत लै कवन जोर एह लेखा लिख जाने कोय लेखा लिखिया कीता होए कीता पसाओ एको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ जो तुत भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ संघ जोग मन रहे हे उदास असंख सूरम भक्त सार संख मोल लिवलाए तार जो तुत भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजो

आदिस्त से आदिश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार एक दूजी भौ लख होहे लख होवे लखवीस हे त्राहि पद पवड़िया चढ़िया होए इकीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मनसोर जिस हाथ जोर कर विखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए तिस विच धरती थाप रखी धर्म साल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते ब्रह्मे काढ़त घड़िया रूप रंग के वेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते देव दानु मुन केते केते रतन समुंद केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत नांत सर्मखंड की बाणी रूप तथा घाड़त घड़िया बहुत अनूप तथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तथा घड़िया सुरा सिद्धा की सुध इथे जोत महाबल सूर तिन महराम रहया भार पूर ना ऊह मरे न ठाके जाहे जिन कह राम से मन माहे सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहार।

0: मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्र
1: नमो इसे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्ध कर्ता
1: अदौर्ध्यर्थं कंगु गहर्ता
0: परम परमेश्वरं पोच पा

0: सर्वत्र गंता
1: ये सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: ये सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
1: ये सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है
0: ये सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है
1: ये सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है।

0: के हुस्न चराग है
1: अमल करी में के राज करहिम है
0: के रोजी दिहंद है के राज ग्रहंद है
1: गरी मुल्क माल है के हुस्न जमाल है
0: गनी मुल्क राज है गरीब उल निवाज है
1: हरी फुर्सी कन है हिरा सुल्फी कन है
0: कलंक बना से समस्त उल निवास है
1: अगंजुल गरी मेरे जाय करहिम है
0: समस्त उल जुबा है के साहिब की राह है
1: कलंक बना से बेसुल निवास
0: है के सरबुल गवन है हमें सुल रवन है
1: तमाम उत्तमी जय समस्तुल अजीज है
0: परम परमी से समस्त उल अदीस है
1: अले सुल अले के हमें सुल अपेक है
0: जमीन उल जमा है अमी कुली माँ है
1: करी मुल कमाल है के जुरे अच्छे माल है
0: के अचलंग प्रकाश है के अमित

0: दीन बंधु स्तन के हंता तुम पुरी चतुर्दश कंता
1: काल पाए
0: शिव जुगव सरा काल पाए शिव प्रकाश सकल काल का किया तमाशा
1: काल जो की शिव की वेद।

0: आप सवारी
1: शिव कन को शिव कन सुख दियो सतरण को परमो बद कियो
0: कट कट के अंदर की जाने थुले बरे की पीर पिछाने
1: चीटी ते गुंजर सूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए सुख पाए सुरंगे

0: परम प्योर आप के ऊपर
1: अंडज रसे तजकिनि उत्पल कान
2: बहुत रचकिनि
0: बहुला जह वेत कौन सी हो संगर के तार
1: सगरी सृष्टि काय चंभवा जुगा स्वरूप संभव
0: अब रक्षा मिली तुम करो सिख वार सिख सुंगर
1: दुजते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण गाता
0: जय सब समय पर जिनके दुष्ट कुत मरे
1: और जन भग पर हारे जिनके तुम संकट सब तारे
0: कोई बात दिया है ताकि काल नहीं आए है
1: रचा होए ताहे सब काला
2: दुष्ट अरिष्ट
1: तरे तत्काला
0: ताकि ताप नहीं मार
1: रिद्ध सिद्ध कर्मों

0: कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी।
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी,
0: बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। हर हर नित करहे रसना कहा कछु न जानी।

0: पाया
1: आप मुल्क है मुल न पाया जाए,
0: मुल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए। जिस दादी जियो तिस मिले रहे हर वसे मन आए।
1: आप मुल्क है भक्तना के नानका
0: जिन हर पल्ले पाए।
2: हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुर ते रास जानी।
0: हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी।
2: तन तिन्ना मिलया जिन हर आपे पाना।
0: कहे नानक हर रास मेरी मन हो आवन जा रहा।
2: रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए।
1: प्यास न जाए
0: होरत किते जिच्चर हर रस पल्ले न पाए।
2: रस पाए पल्ले पिए हर रस बोड़ न तृष्णा लागे आए।
0: ए हर रस कर्मी पाइए सतगुर मिले जिसे आए।
2: नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मने।

0: पिता जिन जीव पाए जगत दिखाया,
1: प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया।
0: ए नानक सिसका मूल रचिया ज्योत राखी ता तू जग में आया।
1: चाओ प्या प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया।
0: हर गाओ मंगल नि सखिए सोख दुख ना ब्यापे।
1: चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापे।
0: अनहद बानी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो।
1: नानक प्रभ आप मिलिया करण का।

दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र

0: गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तप प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित सांतो बार गनी मन गारे
0: पच पसुनक नाग नराधक सर्व सभे सबको प्रतपारे
1: जल में तल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे
0: दीन दयाल दयानित दोखत देखत है पर देत न हारे
1: दुख दोखन को दल दुजन के पल में दर डारे
0: खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे
1: न पाए सके पद्मापत वेद देव भेद उचारे
0: राज लोकत राज रो रोहान की रोजी ना टारे
1: रंग रंग भुजंगम भूत भवेक भवान बनाए
0: देव अधे खपे हमे लपे लखे परम सी परमाए
1: वेद पुराण देव कुरान सेवत के घर हाथ नाए
0: पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद शिष्य पद्मा पद पाए
1: आज अनंत गाद द्वैक सो भूत भवेक भवान अपह है
0: नातम आप अदाम अदव अदिच्छित अच्छिद
1: रचे करता हरता जल में तल में भरता प्रभ है
0: दीन दयाल दयान
1: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न पह
0: है सभे सभोतन ने।

0: आपत से दसन आसनंत अंत आयो
1: तां चरोता को मन में जाय को अमितो सब जग छायो
0: वेद पुराणक देव कुरान भेद निर्वाण सबे पचारे
1: भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अन छेद पुकारे
0: राग न रूप न रेख न रंग न साख न सोग न सांग तिहारे
1: आदन आद अगाध पैक लै

चक्र चिह्न और वर्ण जात और पात नहिं जेहे रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कह कोट इंद्र इंद्रान सहे सहन गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिन कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन

गले अष्टपदी। जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होत सुवान, जो जाने मैं जो बनमंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहवे, जन्म रे बहुजोन परमावे, तान भूम का जो करे गुमान। सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा, जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक हा मुक्त आगे सुख पावे। धनवंता हुए कर गरबावे, तिन्न समान कश संग ना जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस। पल पीतर दा का हुए बिनास, तब ते आप जाने बलवंत, खिन मैं हुए जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी। धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जा का मिटै अभिमान, सो जान नानक दरगै परवान। कोट कर्म करे हों तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार। अनक जतन कार्या तम नहीं द्रवै, हर दरगे कहो कैसे गवै, आपस को जो भला कहावै, तिसह भलाई निकट न आवै। सर्व कीरे न जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जाब लग जाने मुझते काश होए, ता बिसको सुख नाही कोए। जाब एह जाने मैं किस करता, तब लग गर्ब जौन मह फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नेह चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा दे बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लाख को उठ तावै है, तावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै, त्रिपत न आवै माया पाछै पावै, अनक भोग बिखिया के करै। नह त्रिपता वै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं कौ राजै, सुपन मनोरथ ब्रथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा हुए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किशकीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूँ कै संग, बूझे देखे करें बबेक, आप है एक आप है अनेक। मरे न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए, आप उपदेसै समझे आप, आपे रचया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्थार, सब काश सकाओ करने हार। उसते पिन कहो किश होए, थान थनंतर कै सोए, अपने चलत प्रभ आप करने हार, कौतक करे रंग या पार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किन वखयानी। सच सच सच सब कीना, कोड़ मदे किन बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपारिया नूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घाट घाट सुनी श्रवण बखयानी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक। संत सरन जो जान परै, सो जाने उदर नहार, संत की निंदा नानका बहु।